ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेडे बोल बोल के मैं तेनू अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा परिया। तकना के परमात्मा रूप कैसा वेखदा, शारीरिक रूप नहीं वेखदा,

बलवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला हो, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिए ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

दो मित्रां नूं आपस विच काम पे आ। एक मित्र ने किया, लै मित्रा मेरा काम करना ही, कहन लगा चंगा कर देवांगा। समा पै गया, भुल गया, ना कीता। एक दिन मुलाकात

फिर तुसी दसो कि अपने अवगुण किवें बख्शाए जा सकते ने। वो सतगुरु साढ़े अवगुण बख्श भी देवेगा। भाई साहब कहते ने, मैं विश्वास नाल कहना वा कि हे मनुख तू अवगुण करने छड़ दे, ओ परमात्मा तेरे अवगुण बख्श देवेगा। ऐसा नहीं कि अवगुण भी करी जाए ते नाल दी नाल बख्शाई भी जाए, नहीं एक दिन तौबा कर ले, ओ ते बख्शन जोग है ही, उन्हें ते बख्शते रहना है। पर ऐसी गल नहीं कि तू अवगुण करदा ही चला जावे, नहीं तू तौबा कर, सतगुरु दा सिमरन कर।

अमृत की है, अमृत है परमेश्वर दा नाम, अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तैयार करके सिखा नु पियाया ते खालसा पंथ साजिया। पर इस अमृत दी कहानी बड़ी लंबी, चार युग होए ने, सात युग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग। हर युग विच अमृत पीता गया, पर अमृत पीण दा टंग वखरा, अमृत लभण दा टंग वखरा। एक गल होर, कुछ लोकां अमृत पीता पहलियां युगां विच, अमर होने वास्ते कि सानू मौत ना आवे, कोई दुख लागे ना आवे, अपने वास्ते अमृत पीता अपने भले वास्ते। पर जिहड़ा अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिखां नूं पियाया, ओ अमृत आपा वारन वास्ते, जुलम खत्म करन वास्ते, मजलूमां दी रखिया करन वास्ते। तो आओ विचार करिए, पहला सतयुग बारे के सतयुग विच ए अमृत किस तरह मिलिया ते किस तरह पीता गया। पहला हिंदू मत अनुसार कथा, उस तो बाद गुरमत अनुसार।

एक किस्सा तरती तेन से पानी मनिया गया समुंदर बड़ा वटे एक वरी देवतिया ने विचार की थी देखिए ता सही एडा वड़ा समुंदर है इस विच की चीज है केड़ी केड़ी वस्तु है पर एडे वड़े समुंदर विचों चीजा लभनिया ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा सी सलाह कीती सारे क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदों मिलेगा जदों आपां दही नू रिड़कांगे ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है रस्से दी लोड़ है समुंदर नू रिड़कण वास्ते भी मदानी चाहिए रस्सा चाहिए पर समुंदर अथाह है एडे वड़े समुंदर वास्ते लकड़ दी मदानी बनानी बड़ी औखी ता सारियां देवतियां सलाह करके मंदराचल पर्वत नू मदानी बनाया शेष नाग नू रस्सा बनाया शेष नाग नू उस पर्वत दे द्वाले लपेटिया गया एक पासियों उस सप नू देवतिया ने फड़िया एक पासियों दैंता ने देवतिया विच विष्णु भगवान इंदर आदिक देवते ने दूसरे पास से दैंत बड़ी शक्ति ते ताकत वाले एक वरी साप नू शेष नाग नू देवत्या ने अपने वाल खिचिया एक वरी दैंता ने साप नू शेष नाग नू अपने वाल खिचिया ते ओ जड़ा पर्वत सी ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਾਣੀ ਘੁੰਮਦੀ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਦੈਂਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ते सारियां तू पहला जहर निकलिया जहर बड़ा खतरनाक सी धरती ते सुट देने ता नुकसान बड़ा हुंदे ओ जहर शिवजी भगवान नू पीण वास्ते बेनती कीती गई ओ सारा जहर शिवजी भगवान ने पीता उस जहर दा असर शिवजी भगवान ते भी होया उन्हां दे गले दा रंग नीला पै गया इस करके शिवजी भगवान नू लोक नीलकंठ भगवान करके भी याद करदे जहर तों बाद अनेकां वस्तुआं निकलियां जिन्हां विच काम तीन गऊ पारजात दरखत लक्ष्मी अनेकां वस्तुआं निकलियां लक्ष्मी नू विष्णु भगवान जी ने अपना लिया पारजात दरखत नू इंद्र देवता अपने स्वर्गां विच लै गया जिते अनेकां चीजां निकलियां उथे अमृत दा कड़ा भी निकलिया पर ए अमृत दा कड़ा दैंतां दे हाथ लग गया

एक गुफा च बह जा। करोड़ा करोड़ा साल हवा खा के हवा पी के तेरा नाम जपा, सुपने विच भी मैं सोवा ना, इन्ना तेरा नाम जपा

साहब तो बाद गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन साहब, गुरु हर गोविंद साहब, गुरु हर राय साहब, गुरु हर कृष्ण साहब जी, गुरु तेग बहादुर साहब जी, अते दसवें गुरु धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गुरगद्दी ते बैठे। भाई वीर सिंह जी लिखते ने, आनंदपुर साहब छड़िया एक गुफा विच धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 11 महीने 11 दिन बैठे रहे। 11 महीने अते 11 दिन जदों होए, 11वें दिन धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अकाल पुरख नूं इक गल याद कराई।

सुत कंदे निपुत्र तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख नु कहंदे ने ऐ अकाल पुरख तुसा क्या सी मैं अपना सुत तोहे निवाजा पंत प्राचुर करबे को साजा ऐ दुष्ट दमन तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पहले जन्म का नाम दुष्ट दमन सी ऐ दुष्ट दमन मैं तैनू अपना पुत्र बना के इस दुनिया ते भेज रहे हैं एक नवा पंथ चलाने वास्ते ऐ अकाल पुरख हुण मैनू दस मैं कहो जी शकल कहो जी सूरत इंसान नू दया कहो जिया मैं पंथ

अकाल पुरख दे चरणा विच बेनती कीती। गुरु साहिबां दी अखां बंद ने, अखां दे सामने एक सूरत आई, लत्तां पतलियां पर भार सहण वालियां, चौड़ी छाती, मत्था चमकदा, अखां विच नाम दी लाली, बोल फरकदे नहीं, सोहना दाड़ा, सिर ते दस्तार, हाथ कड़ा, गात्रे कृपान, तेड़ कछहरा। सोहनी सूरत देखी तो गुरु साहब जी पुछदे ने, ऐ सूरत तू कौन है? उस सूरत बोली, मैं खालसा। गुरु साहब जी पुछदे ने, तू कित्थों आई है? उस सूरत बोली, मैं तुहाडे हिरदे विचों आई हां, मैनू हुण तुसी बाहर प्रगट करो। जो चाहिदा सी ओ मिल गया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वापस आनंदपुर साहब आ गए, पर सोचन लगे, ये सूरत बड़ी सोहनी है, पर किन्नू दिया? मसंदा नू, पंडता नू, साधुआं सन्यासियां नू किन्नू दिया ये सूरत? क्योंकि जे आपां दुध लैण जाना होवे ते भांडे नू चंगी तरह साफ करके ले जाने हैं, जे दुध वास्ते भांडा साफ चाहिए ते अमृत वास्ते भी तां मन दा भांडा सोहना।

आनंदपुर साहब, धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दा दरबार सजे है। एक पासे माइया बैठिया ने, एक पासे पुरुष बैठे ने। सिंघासन ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विराजमान ने। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होए है, कीर्तन हो रहे है। अचानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने अखां बंद कीतिया सन, अखां खोलिया, एक पहरेदार सिख नू कोल बुलाया ते कहन लगे, सिखा कुछ दूर दरखत है, उस दरखत दे थले एक सिख बैठा रो रहे है, जाओ उसनू प्यार नाल साडे कोल लै आ। पहरेदार चला गया, दूर दरखत थले सचमुच एक सिख बैठा रो रहे है, अखां बंद नहीं, हाथ जुड़े हुए ने, पर बंद अखां विचों अथरू पै गिरदे ने, ते नाले कह रहे है, ऐ सच्चे पातशाह मैं की गुनाह कीता है, की पाप कीता है, काबुल तू आया तेरे दरबार पहुंच गया, पर तेरे दर्शन करन दा मैनू हुक्म नहीं। पहरेदार सिख पहला ते सुनदा रहा, फिर मोढ़ा फड़ के हिलाया ते नाले कहा, सिखा तू कोई पाप नहीं कीता, तेनू ते आप कलगियां वाले ने याद कीता। उससे उठिया, अखां पूंजदा होया, पहरेदार दे नाल तुर पिया। जदों दरबार विच दाखल होण लगा, इत्थे भी इक पहरेदार खलोता सी, उसने कहा, ये काबल वाला सिख दरबार विच नहीं जा सकता। नाल आया पहरेदार, कहन लगा, ये दरबार क्यों नहीं जा सकता? तां खलोता पहरेदार कहन लगा, जेड़ा वड्डा मसंद है चेतो, उहदा हुक्म है इस काबल वाले सिख नूं दरबार विच नहीं जान देना। ते सुन के नाल आया पहरेदार कहन लगा, जेड़ा चेतो मसंद दा मालिक है कलगियां वाला, मैनू उहदा हुक्म होया। ये सुन के पहला पहरेदार परां हट गया, सिख दे हाथ जुड़े ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सामने पहुंचे, दर्शन कीते, अखां विचों अथरू वगन लग पए। तीन दिन हो गए सन रोंदे आ, अरदासां करदे आ, गुरु दे दर्शन कीते, अपना सिर चरना ते रख दिता, ते कलगीधर पातशाह सिर ते प्यार नाल हाथ फेरदे ने, ते नाले बड़े प्यार दे नाल कहन लगे, सिखा काबुल तू आए, तीन दिन हो गए ने तैनू रोंदे आ, सानू पता है, सिखा साडे नाल बड़ा प्यार करना है, पर साडे वास्ते बेटा की लैके आए। साध संगत, गुरु किसी चीज का भुखा नहीं, गुरु ने बेटा क्यों मंगी, ए ते गुरु का कौतुक है। कहन लगे, सिखा साडे वास्ते बेटा की लियांदी। सिख हाथ जोड़ के कहन लगा, पातशाह मैं की देन जूगा, सब कुछ आपदा है,

सुनिया रहा हूँ हाथियां दे दंद दा एक कंगन जिदे विच हीरे जड़े हुए सन मैं आपदे वड्डे मसंद चेतो नूं उदों दिता सी जदों काबल गया सी। दूसरा कंगन जिदे विच हीरे जड़े ने मैं लैके आया सा वो कंगन मैं चेतो मसंद नूं दे दिता क्योंकि चेतो ने कहा सी कि सिखा तेरे नाल गुरु साहब जी बड़े नाराज ने तू दरबार विच ना जाई। ए सुन के गुरु साहबा ने अपने दोनों हाथ अगे कर दिते ते नाले कहन लगे सिखा ऐ देख मेरे हाथ ते खाली ने तेरे कंगन मेरे कोल नहीं आए। सिख ने कहा पातशाह मैं ता चेतो मसंद नूं दित्ते सन ते चेतो मसंद संगत च बैठा सी उठ के खड़ा हो गया कहन लगा पातशाह ए झूठ बोलदा है ए कंगाल कंगन कित्थों दे सकदा है।

पंडितों की प्रीख्या ले दो लंगर लाए, एक विच मास बनाया, एक लंगर सादा बनाया। ते साहबा ने कहा जिहड़ा मास वाला लंगर छकेगा उन्नू बहुत ही माया मिलेगी, जिहड़ा सादा लंगर छकेगा उन्नू घट माया मिलेगी। मास खाण दे नाल सोने दियां मोहरां ज्यादा मिलनियां ने, ए सोच के बहुते मास वाले पासे बैठ गए, सादे पासे घट बैठे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिन्हां ने सादा लंगर खाधा उन्हां पंडितां नूं चोखी माया दित्ती, ते जिन्हां ने मास वाला लंगर खाधा जिन्नी कही सी उन्नी उन्नी माया उन्हां नूं दित्ती। पर इन्हां वल्लों भी मन उदास हो गया कि जिहड़ा आदमी माया बदले अपने धर्म ते पक्का नहीं रह सकदा।

छुट्टी वाले दिन बड़ा पारी इकट्ठ कीता। हिंदुस्तान दा बादशाह उस वक्त औरंगजेब सी। औरंगजेब दे जासूसा ने औरंगजेब नू जड़ी खबर भेजी, उहदे विच लिखे है तकरीबन 50,000 दे करीब लोकां दा इकट्ठ सी। आनंदपुर साहब संगत बैठी, कीर्तन हो रहे, बड़ा आनंद आ रहे। सिंघासन ते गुरु साहिब जी विराजमान ने। अचानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चेहरे दा रंग बदली होया, चेहरे ते कठोरता आ गई। म्यान विच कृपान खिची ते ललकार के कहा, साध संगत मैनू एक सिर दी लोड़। पहला तक किसी नूं समझ ही ना आई, जदों दोबारा कहा मैनू एक सिर दी लोड़ है, हर पासे सहम छा गया कि ए की हो गया। गुरु साहिब जी अपने सिखां दे सिर मंगण लग पए। तीसरी बारी सिर मंगया

सतगुरु कहंदे ने देह सदा नहीं रहनी, जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना तां इदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

बहुत कमाल दी गल कर दी। सप डंग मार देंगे कहते ने लोग, सप तो बचने की कोशिश करती कि सप का डंगया होया मनुख बच नहीं सकता, पर फरमाते नहीं

दूसरा रास्ता दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत शायद सानू दसते ने किते जातरक नू वेख लै पपीए नू वेख लै जेड़ा स्वाति बूंद के पिछे पपी पपी प्या करदा है। सब बाणी विच कहिंदे ने

शिव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साई है, एक पल भी नहीं विछड़दा त्यारिया। पाछा तू मेरे ते कृपा कर, किड्डी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याछा हजूर।

गुरु नानक दी मोर ला के धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गाव बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साई कितने गुण गायन करन हजूर बाणी विच कहंदे ने

साहब जी रचना ते इको ही है लेकिन तेरे गुण बहुते ने। भगत कबीर जी महाराज उस मालिक दे गुणा दा अथाह बयान करदे होए अपने रचना तो कृपा करदे ने ते आंदे ने

एडी प्यास है तेरे दीदार दी, एडी आस है तेरे दीदार दी, मेरे मालका कर कृपा मेरे दे। को ऐसा संत मोको फिर है मिला, कोई भाई गुरु दा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरुदेव प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जड़ी आस लगी हुई है वो मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा विच तरला करिए। गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो आंदे ने मन ऐसा नहीं हो करे, ऐसी प्रीत कर लै जिवें मछली ने पानी नाल कर ली, चात्रक ने पबीए ने स्वाति बूंद नाल कर ली है, भंवरे का प्यार फुल दे नाल है सुगंधी नाल है, जिहड़ी प्रीत कदी टुटे ना पातशाह मेरे मालका एहो जी प्रीत कर, एहो जी कृपा कर, मेरा मन भी तेरे चरणा नाल जी।

गुरु के भी औगण कढ़न बह जाना कमाल दी गल है। आपना देह चुरू पर पानी तेह निंदे जे गंगा आनी। जिन्हां ने गंगा पाड़ा चो खिच के धरती ते लया दी ओदी निंदिया करन बह जांदा ते अपने कोलों चुली पानी दी नहीं दे हो। ऐसा ही मनुख की दशा होंदी चली जा रही है कि औरना दी होरना दी निंदिया करदिया करदिया गुरु की भी निंदिया करन लग पई, गुरु विच भी औगण कढ़न लग पैंदा। और कमाल की गल है कोई दूजे मत वाले जिन्हां दा सिक्खी च कोई विश्वास नहीं वो गुरु बारे कोई गल करन सुन के साथों बर्दाश्त ना होवे, क्योंकि महाराज कलगीधर पातशाह ने गुरसिख वास्ते हुक्म कराया गुर की निंदा सुने ना कान। इथे जे गुरु का सिख आप ही गुरसिखी का बाणा पा के गुरु के औगण कढ़ने शुरू कर देवे उस बंदे को आप को किसे गुण की आसा नहीं की जा सकती। भाई साहब कहते ने होर ता होर दुनिया में की माफ करना, मैं गुरु की निंदिया तो बाज नहीं आना। सतगुर ते मैं चेहा बेमुख ना कोई, सतगुर ते बेमुख हथियारा, मेरे नाल वड्डा बेमुख होर कौन होवेगा, मेरे नाल वड्डा हथियारा कौन होवेगा, मैं गुरु तो बेमुख होरना दे मैं की सरमुख होवांगा, होरना दा की मित्र बनांगा, गुरु तो ही बेमुख। कहंदे ने मैं जेहा को दुष्ट नाहे निर्वैरे सो वैर विकारा, भले लोकां नाल वैर मेरा बुरे लोकां नाल यारी मेरी, भले लोकां नाल विकार ते बुराई करन वाला उन्हां नाल वैर कमाउन वाला मेरे वर्गा दुष्ट होर कौन होवे। मैं जेहा ना विश्वास करो, मेरे ते कोई विश्वास करे ते मैं ओहदे नाल धोखा करां। विश्वास त्रोही विश्वास घाटी अकिरत कहन, मैं को ना रखंदा। इथे कहंदे ने जेड़ा मेरे ते विश्वास करे मैं ओहदे नाल त्रोह कर जाना, मेरे कोल ओहदे नाल भी धोखा हो जांदा है। बगल समाधि मीन आहारा, उत्तों वेखण नूं चंगा चंगा समाधि जिवें बगला ला के बहिंदा है खलोंदा है समाधि ला के ते अपने पैरां कोल आउण वाली हर मच्छी डड्डी नूं ओह धोखे नाल चपट के खा जांदा है। ऐसा ही किते मेरा पखंड लोकां नूं धोखा देण वास्ते तां नहीं, ए भी अपने आप ते निगाह रखी जाए, कुछ सुधार होने की आस हो सकती है। भाई साहब कहंदे ने बजर लेप ना उतरे पिंड अपरचय औचर चारा, ए तो वड्डा पाप मेरा किथे माफ होवेगा कि मैं अपने शरीर नाल अपने जीवन नाल ही प्यार नहीं कर सकता पिया, और जो नहीं खाना चाहिदा मैं वो खा के अपने शरीर दा अपने जीवन दा नाश कर रहा, अपने शरीर प्रति मैं ईमानदार नहीं हां। भाई साहब कहंदे ने मैं जेहा ना दबाजरा दोहरे जीवन वाला, जिदा अंदर बाहर एक नहीं है, अंदरों होर ते बाहरों होर। ताज गुरमत दुरमत हितकारा, गुरमत नाल माड़ी मत नाल मैं प्यार कर रहा, गुरु की गुरमत नूं अपने जीवन च थां नहीं दे रहा। कहाउण नूं मैं सिख हां ना मुरीद ना शब्द विचारा, कहाउण नूं सिख हां लेकिन गुरु के शब्द दी विचार नहीं, गुरु के बचना नाल प्यार नहीं। कहो जिहा सिख हां, एहो जिहा सिख भाई साहब नहीं चाहुंदे, एहो जिहा सिख होना भाई साहब पसंद नहीं करदे ते कोई भी पसंद नहीं करेगा। गल सिर्फ इन्नी है कि साडी अपने आप ते निगाह नहीं, जिस दिन अपने आप नूं ध्यान नाल वेखांगे ना इन्हां गुनाहां नूं जीवन चो कढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा। लोड़ है भाई साहब दे इन्हां शब्दां द्वारा अपने आप ते निगाह रखी।

जिस वेले भगतिया ने तकिया भी जिदे विच लोग माया पा रहे ने वो लोटा किधर चला गया ते भाई साहब कहंदे ने ओ भगतिया नू ओ भगत पाउणी भुल गई ना उतार रहा ना उराग रहा।

वचन जुगीसरा भाई साहब कहते हूं झगड़ा कर लगे ने गुरु नानक नू डराउन लगे अपनी शक्तियां दा प्रभाव पाके

मित्र हुंदा ही होए जिहड़ा मनुख दा भला लोचे, जिहड़ा मित्र मिले ते बुरे पासे लै जा, भला फिर होर दुश्मन दी की लोड़। जिहड़ा अखौती मित्र मिले, मित्रता दे नां थले बुरे पासे लै तुरे, बुराइयां वाले पासे प्रेर लै जा, गलत कम्मां वाले पासे लै तुरे, या जेड़े मित्र दे आया जीवन दा कीमती समा आ जाई तुरिया चला जा, गलत गल्लां विच, निंदा चुगली विच, गलत खेड़ां विच, गलत कारियां विच मनुख दा कर्म भ्रिष्ट हुंदा चला जावे, वो मित्र नहीं दुश्मन है। क्योंकि जो कर्म असी करने ने उन दा फल साडे सामने होना, अज नहीं कल नूं, ऐस नहीं अगले जन्म नूं, साडे कीते कर्म साडे सामने आ जाने। ते जेड़ा बंदा गलत कम्मां दी प्रेरणा करता है, उहदे नाल वड्डा दुश्मन होर कौन होवे। पर मनुखे भुलेखे च पिया होया है, जिहदे नाल जी परच जावे, जेड़ा कोल बह के चार गल्लां करे, सुने सुनावे, उहनूं असीं मित्र समझ रहे हां। हालांकि साहिबां ने पावन बाणी च बड़ी सख्त प्रेरणा कीती है, साहिब कहिंदे ने कर मित्राई साहिब सिरसा साध स्यों नेचर पावे थां। जे मित्रता करनी है ना, नानक कचड़िया स्यो तोड़, टूंड सज्जन संत पकिया, तू मित्र लभने ने ते पक्के मित्र लभ, कचिया बल्लिया दे नाल की मित्रता पाउणी है, जिन्हां दा अपना कोई स्टैंड नहीं। अज कम करदे ने कल नूं पछताउंदे नजर आउंदे, अज कुकर्म करदे ने कल नूं उहनां कुकर्मां दे फल दे सामने रोंदे नजर आउंदे। निराए ही नहीं, ए जे कच्चे मित्र तेरे भी नाल निभ नहीं सकने, ओए जीवन दे विछड़े, जूंदियां ही जिंदगी च कोई औखा वक्त आ गया ते छड़ के तुर जाणगे। तू उहना मित्रां नाल सांझ पा जेड़े साहिब कहिंदे ने ओए मोया ना जाही छोड़, इत्थे भी तैनू सुख देण ते दरगाह विच भी तेरा साथ दे सकण, उत्थे भी तेरी बौड़ी कर सकण, जिन्हां दे सदका जिन्हां दे नाल लग के उत्थे भी तेरा भला हो सके। संसार ते भी ऐसा तुसां वेखिया है, किसे भले आदमी नाल मित्रता आई होवे, किसे नेक बंदे नाल मित्रता आई होवे, कोई औखा सौखा वेला आ जावे, वाज मार लो, बुला लो मित्र नूं कि मैं फसिया, गलत काम कर बैठा, भुल हो गई, गलती हो गई, या वैसे ही फस गया, मित्र आ जा। जिस सभा सोसाइटी दे सामने, जिस समाज दे सामने असी मुजरम हां, उस मित्र दे कोल आके बह जाण दे नाल फिर पंच कहिंदे, ओ कहिंदे ने भई तू आ गई है, तेरा मित्र इस करके छड्दे ने, तेरे कहण ते छड्दे ने, तू इहदी शादी भरना ते छड्दे ने, तेरा मित्र इहते लिहाज करदे ने, तेरा पुत्र ते लिहाज करदे ने, तेरे भरा करके छड्दे ने। चंगे बंदे दा प्रभाव पैंदा, ते जे किते उहनां लोकां नाल जिन्हां ने दरगाह तक निभ जाणा साडी सांझ होवे, उहनां दे सदका उत्थे वी बख्शे जा सकदे, बल्कि उत्थे बख्शे जाण दी गल जे इक पासे रख दईए, जीवन विच ही मनुख भले लोकां नाल मिल के उहनां दी रंगण च रंगिया जा के, ऐसी दशा आउंदी नहीं, ऐसी नौबत आउंदी नहीं कि मनुख कोलों कोई लेखा पुछण जोगा रह जावे। चंगे मित्रां ने मनुख नूं हमेशा सुधारिया। मित्र चंगा होए जेड़ा सामने बैठ के प्यार नाल गल समझा देवे। सजना जीवन विच विकार सोधा नहीं देंदे, माड़ियां आदतां माड़े कर्म तेरे जीवन नूं तबाह कर देणगे, ते ओ मित्र बड़ा चंगा है जेड़ा बाह फड़ के गुरुद्वारे लै आवे, गुरु नानक दे दरबार विच लै आवे, जेड़ा जिस वेले मेरे गुरु की गल करे, प्रभु की गल करे, बाणी की गल करे, जेड़ा मित्र ईश्वर की गल करे, भगती की गल करे, धर्म की गल करे ना, ओदे नालों चंगा मित्र सानू संसार ते होर कोई नहीं मिल सकता। असां तां इह वेखिया आम तौर ते कि जिस मित्र नाल मन परच जावे ओह चंगा मित्र है, या जिस मित्र दे मिलिया कुछ चार पैसिआं दा लाभ हुंदा होवे ओह चंगा मित्र है। लेकिन महाराज कहिंदे ने ओह मित्र जिहड़ा प्रभु नाल जोड़दा, उस मित्र तों मैं अपना तन मन धनवार ने कर दिया, तन मन धन अर्पो तिसे प्रभु मिलावे मोहे, जेड़ा मेरी प्रभु नाल सांझ पुआ दे
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣ ਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਓ ਠਾਕੁਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤਿਨਾਂ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣਾ ਲੋੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਣਾ ਲੋੜਨਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਮ ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ਸੰਤੋ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਨ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਰੰਗ ਚ ਰਹਤੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ਸੰਤੋ, ਨਿਭਾਹ ਲਿਓ ਮੋਕੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਰੋ ਤੇ ਨਿਭਾ ਦਿਓ ਤੁਰ ਤੱਕ, ਵਿਧਾਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਓੜ ਪਹੁੰਚਾਓ ਦਾਤੇ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਵਾਰਨਾ ਪਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਸੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ। ਸੀਸ ਵੱਢੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ, ਵਿਣ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੈ ਜੀੜਾ ਨਾ ਦੀਜੈ, ਜਾਂ ਸੋ ਭਇਆ ਵਿਡਾਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਉਪਰੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਝ ਬਣ ਗਈ, ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਛਾ

परस किए जुग चार चढ़ो कैलाश रहो। कोई चार युग कैलाश पर्वत ते बह के तप कर लवे और इसका महात्म इथे ही बस नहीं अगलिया तो

कुरुक्षेत्र में अश्वमेध जग अभंग थयो, हुन अमृत नाम विशेष इति जिन एक बार श्री वाहेगुरु कहो। आख्या वाहेगुरु जपन दा इदा वड़ा महात्म क्यों है? ता भाई साहब अगली पौड़ी

जमरौत दी जंग विच सिखा ने पठाना नू ऐसी मार मारी कि पठान कन्ना नू हथ ला तौबा तौबा कर उठे। काबल दियां गलियां बाजारां विच नलवे दियां गल्लां होण लगियां। नलवे तो डरदे पठान सूरज डुबदे सार घरां नू जंदरे ला अंदरी लुक जांदे। चार चुफेरे मरियां वर्गी चुप छा जांदी। अपने रोंदे न्यारियां नू चुप कराउण लई पठानियां इउं डराउंदियां।

0: सिख राज दिया हद्दा, दिनों दिन काबल वालू वद्दिया देख, पठार सोची डूब गए।
1: अमीर काबल दोस्त मोहम्मद खां घबरा गया।
0: सरदार हरि सिंह नलुए दी चढ़त, पठाड़ा नू अपनी मौत दिसण लगी।
1: कई हजार मुल्किया कट्ठा कर शमी खान ने अपने दादे परदादे दी बहादरी दे वास्ते पौंदिया इंज आखिया।

0: 28 अप्रैल 1837 दा सूरज चढ़दिया ही 1000 सिंघा ने पठाणा नू जा ललकारिया। सत श्री अकाल दे जयकारिया नाल आसमान गूंज उठिया, तलवारा पिड़िया
1: धरती लहू लुहान हो गई,
0: लोथा ते लोथा चढ़ गईया। गुरु दे सिंघा ने ऐसे हद दिखाए कि गाजिया दे दंद जुड़ गए। दूजे दिन तोपां दे गोले दागे, रात पैंदिया ही जमरौद किले दी सज्जी कंध विच पाड़ पै गया।
1: हुण महासिंह अग्गे तीन काम सन, किले दी राखी करना, कंध दा पाड़ पूरना ते पिशोर बीमार पए सरदार हरी सिंह नलुए नू सुनेहा पहुंचाना।
0: सिंघा दे रोक दिया बीबी हरशरण कौर जत्थेदार तो चिट्ठी लै पेश बदल, किले विचों निकल तुरी। रातो रात पेंडा मुका, पिशौर च सरदार हरी सिंह नलुए नू जा चिट्ठी पुचाई। पढ़ के सरदार दिया अखा विच खून उतर आया, डौले फरके तलवार दे मुठे ते हथ गया। ऐ सोच के कि मेरी जिंदगी ही सिख राज दी जिंदगी है, ओ उठ बैठा। खालसे दी तलवार आज हिंदुस्तान दा इतिहास बदल सकती है, मैं जान नालों सिखी शान नू प्यारी समझदा हां। ऐ सोच दिया ही चट सिंघा नू इकट्ठे कर सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

0: अप्रैल 1837 का सूरज चढ़दिया ही सरदार हरि सिंह नलुए ने सिख फौजा समेत बोले सो निहाल दा जयकारा गजा शम्मी खां दी फौज दा जा टाकरा कीता। तलवारा बरछिया विच्चों मौत दे चंग्यारे निकले, लोथा नू लिताड़ दे सिंगा दे कोड़े अगे वदन लगे, मनुखी सिर मतीरिया वांग पैरा विच रुलन लगे।
1: तरती लाल सूही हो गई, सरदार हरि सिंह नलुआ ते शम्मी खान मैदाने जंग विच एक दूजे नू एउं टकरे।

0: सरदार हरि सिंह ने फट नू कुट के बन लिया। कोड़े नू जमरौद किले वालू मोड़ दिता। किले विच पहुंचदिया ही जत्थेदार महा सिंह ने नलुए सरदार नू कोड़े तो ला पलंग उत्ते लिटा दिता। तकलीफ वद्दी गई।
1: अद्धी रातों शरीर निढाल हो गया, जान साथ छड़न लगी, पर सरदार दे मुख ते लाली उसे तरह डलक रही सी। अजे भी सज्जा हाथ तलवार दी मुठ उते ही सी।
0: मैदानों परत के आए सिंगा तो लड़ाई दा हाल पुछया। जित दी खबर सुन गज के जयकारा बुलाया।
1: ते फेर सारे सिंगा वाल तक सरदार हरि सिंह नलुए ने हौसला दिंदे आख्या,
2: खालसा जी, मैनू अकाल पुरख दा सद्दा आ गया है। मैं पंथ वास्ते जमया सी, ते पंथ वास्ते शहीद हो रिया। मेरे पिछों घबराउणा नहीं, तुसी खालसा राज दे राखे हो। खालसा जी जित्ता जारी रखनिया, पठान मुड़ के हिंदुस्तान वाल मुंह ना कर सकन।
1: एह कहंदिया ही सरदार हरि सिंह नलुए ने अंतम सुनेहा इंज दित्ता।

0: सब इस तुकनु गायन करो और सिंह दिस द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोट महला
1: चौथा
0: चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

तब एक मानस दे ही पाए मानस जन्म अमूल पायो वृथा काहे गवाओ गुर सेवा ते भगत कमाई तब एक मानस दे ही पाए इस दे को सिमरे देव सदे ही पाजू हर की से

जब लग बिकल पाई नहीं बाणी पज लहरे मन सार पानी अब ना पजस पजस कब पाई आवे अंत ना पजिया जाए ए तेरे अवसर ए तेरी बार

गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन किए निरार्थ दाम। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरार्थ दाम। फिरत बहुते जुगहारे हो, फिरत फिरत

कई जन पैकेट पतंगा, कई जनम गाजर मीन कुरंगा, कई जनम पंखे सर्प होयो, कई जनम पंखे सर्प होयो।

आया हाँ। उदो तो मेरे मन नु शांति, हुण ते जेड़े मेरे अंदर वसदे हुए मेरे दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ते जेड़े वैरी सन ऐ पातशाह हुण ते ओ भी मेरे मित्र बन गए हैं। ओ भी हुण मेरा बुरा नहीं चित वदे, सारे ही चंगा चित वदे हैं। ये सब तेरी कृपा है, ये तेरी मेहर है। तू तो मैनू एनिया बख्शिशा कीतिया हैं, एनिया रहमता कीतिया हैं पातशाह, हुण ते मैं आनंद ही आनंद वेख रहा हाँ। चारे पासे खेड़ा ही खेड़ा नजर आउंदा है, क्योंकि तेरी कृपा दृष्टि हो गई है। ते जदों तेरी कृपा दृष्टि होवे सारे कार्ज फिर अपने आप रास हुंदे हन। ते सतगुरु तेरी मेहर है, तेरी कृपा है।

0: तिस गुर को सद करी नमस्कार, तिस गुर को सद जाओ बलहार, सतगुर के चरण धोए धोए पीवा, गुरु नानक जप जप सद जीवा।
1: You are listening to SikhNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

वाणी गवाह है कि बाबा नानक गुरुदेव नानक अपने जीवन विच जदों जदों भी बोले जो भी शब्द मुख चो उचारण कीते वो तत्काल परमात्मा दी दरगाह विच प्रवान होए। साहिबां दा फरमान है गुरबाणी द्वारा, गुरु नानक बोले दरगहें परवान।